नमस्कार शानदार श्रोताओं, लम्हे प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका आरजे चेतन और आज हम एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, हर परिवार का हृदय, सकारात्मक माता पिता, बच्चे का संचार। अरे चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, घर के कामकाज निपटा रहे हो या बस फुर्सत में हो, आइए बात करें कि कैसे संचार आपके परिवार में चीजों को पूरी तरह से बदल सकता है। दोस्तों आइए अब छोटों के साथ अपने संबंधों में प्रभावी संचार के जादू की खोज के लिए एक यात्रा शुरू करें। इसकी कल्पना करें, एक ऐसी दुनिया जहां आपके बच्चों के साथ आपकी बातचीत एक अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया नृत्य की तरह होती है, जो कि एक सकारात्मक और मजबूत संबंध बनाती है। इस एपिसोड में हम ये विश्लेषण करने जा रहे हैं कि माता पिता बच्चों के बीच संचार क्लिक को क्या गतिशील बनाता है। ये सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं है, ये समझ, विश्वास और प्यार का ताना बाना बुनने के बारे में है। सकारात्मक माता

पिता बच्चों के संचार के रहस्यों का उजागर करेंगे, ये पता लगाएंगे कि यह पूरे परिवार के लिए कैसे माहौल तैयार करता है। एक ऐसे घर की कल्पना करें जहां हर कोई सुना, महत्व और जुड़ाव महसूस करता हो। जैसे ही हम पारिवारिक गतिशील पर संचार के प्रभाव को देखते हैं, हमें पता चलेगा कि कैसे हमारे बात करने के तरीके में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, हम यही नहीं रुक रहे हैं। यह सिर्फ सिद्धांत नहीं है, हम आपको आपकी दैनिक बातचीत में कनेक्शन के उस अतिरिक्त स्पर्श को शामिल करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियों से लैस करेंगे। इस आरामदायक माहौल की कल्पना करें जहां आपके बच्चे जानते हैं कि उनके विचार मायने रखते हैं और उनकी आवाज परिवार के मिश्रण में गूंजती है। ये सिर्फ उन पर बात करने के बारे में नहीं है, ये समझ और समर्थन की इस गर्माहट को बुनने के बारे में है। सबसे अच्छे समय में पालन पोषण करना एक कठिन काम है, ये समय लेने वाला भी है। पालन पोषण में कई जिम्मेदारियां शामिल होती है, जैसे बच्चों की देखभाल करना, उन्हें वह सिखाना जो उन्हें जानना आवश्यक हो, और जीवन भर उनका मार्गदर्शन करना। माता पिता बच्चे का रिश्ता एक अनोखा बंधन है जो एक वयस्क और उनके बच्चे के बीच मौजूद होता है। जहाँ एक वयस्क अपने बच्चे की जरूरत की देखभाल करने और उनके वयस्क होने पर मार्गदर्शन प्रदान करने की जिम्मेदारी लेता है। एक अच्छा माता पिता बच्चे के रिश्ते या जहाँ बच्चा प्यार स्वीकार और सुरक्षित महसूस करता है, एक अच्छे माता पिता वह होता है जो बच्चों की भावनाओं को सुनता है, अपने बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहता है और शारीरिक दंड भी भयानात्मक शोषण नहीं करता है। आदर्श रूप से वो बच्चे को तलाशने की विकसित होने के लिए एक सुरक्षित आश्रम प्रदान करते हैं। वे माता पिता को बिना शर्त समर्थन, मार्गदर्शन, अनुशासन और प्रोत्साहन के माध्यम से सिखाने और प्यार दिखाने का अवसर भी प्रदान करता है। माता पिता बच्चे के रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वो प्यार और विश्वास है जो माता पिता का अपने बच्चों के लिए होता है। यही चीजें उन्हें जिम्मेदार वयस्कों के रूप में विकसित होने में मदद करती है जो बड़े होकर अच्छे नागरिक बनेंगे। बदलते दौर में पारिवारिक रिश्ते काफी कमजोर होने लगे हैं। अमूमन लोग इसके पीछे तरह तरह की वजह बताते हैं, लेकिन रिश्ते के कमजोर होने के पीछे एक मुख्य कारण होता है आपसी कम्युनिकेशन की कमी। दरअसल आज के समय में हर कोई अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए, अपने सबसे करीबी रिश्तों को समय दे नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण न तो वह एक दूसरे की समस्याएं व मन में चल रही परेशानियों को समझ पाते हैं और न ही साथ में वक्त बिताने से मिलने वाली खुशी का एहसास हो पाता है। इतना ही नहीं, आपसी कम्युनिकेशन की कमी के कारण आपस में गलतफहमियां पैदा होती है और इससे भी रिश्ते कमजोर होकर बिखरने लग जाते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि फैमिली कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि जब हर कोई अपने काम में इतना व्यस्त है, तो ऐसे में फैमिली कम्युनिकेशन को बेहतर किस तरह बनाया जाए। इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप कुछ छोटे छोटे टिप्स बनाकर ऐसे बेहद आसानी से कर सकते हैं। हो सकता है घर के हर सदस्यों के काम करने का समय अलग है, ऐसे में हर किसी के लिए एक साथ समय निकाल पाना काफी मुश्किल होता है। इसीलिए आप अपने घर में एक नियम तय कर सकते हैं जिसमें दिन के 3 मील से कम एक मील साथ खाएं। इससे आप सभी कुछ वक्त साथ बिताने और फैमिली कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगा। बच्चे की देखरेख करते हुए माता पिता भी काफी कुछ सीखते हैं। भले ही आप अपने बच्चे को कितना भी प्यार करते हो या फिर अपने उसे सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश की हो, लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन के दौरान गलतियां करते हैं तो इससे बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स किसी भी रिश्ते को बेहतर बनाने में एक ब्रिज की तरह काम करती है। अगर ब्रिज कमजोर होता है, ऐसे में रिश्ते अधूरे ही रह जाते हैं। इसीलिए हमेशा ये सलाह दी जाती है कि माता पिता अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर लगातार काम करें। आप भले ही कितने अच्छे या मॉडर्न पेरेंट हो, लेकिन अगर आप कुछ कम्युनिकेशन मिस्टेक्स करते हैं तो इसका इफेक्ट बच्चों को भुगतना पड़ सकता है। वन साइडेड कम्युनिकेशन इज अ मिस्टेक जिसे अधिकतर पेरेंट्स बार बार दोहराते हैं। अमूमन पेरेंट्स अपनी बात तो बच्चे से कह देते हैं, लेकिन अगर बच्चा कुछ कहना चाहता है तो उसकी सुनते ही नहीं।
कई बार हम अपने काम में बिजी हो

जाते हैं या फिर इसे डांटकर चुप कर देते हैं। ऐसा करने से बच्चों को अपने ही घर में काफी अकेला महसूस करने लगता है। कई बार पेरेंट्स जब बच्चे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत अजीब जजमेंटल हो जाते हैं। टिप्पणियों से बच्चे आलोचना महसूस करेंगे, ऐसे में वो प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और इससे बहस शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, कभी कभी बच्चा ये भी सोचने लगता है कि पेरेंट्स उसके बारे में गलत ही सोचते हैं, ऐसे में वो और भी ज्यादा गलत हरकत करना शुरू कर देगा। एक पेरेंट्स के रूप में आपको कभी भी अपने बच्चों से या फिर बच्चे के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये देखा जाता है कि जब कभी बच्चा जिद करता है तो पेरेंट्स उसे शांत करने के लिए झूठा वादा करते हैं, बाद में मुकर जाते हैं, जिससे बच्चे को काफी बुरा लगता है। इतना ही नहीं, इस तरह आप बच्चे के सामने एक गलत उदाहरण भी पेश कर रहे हैं। इससे बच्चे को लगता है कि किसी भी मुश्किल स्थिति से बाहर निकलने के लिए झूठ बोलना सही है। धीरे धीरे बच्चा हर छोटी छोटी बात पर झूठ बोलना शुरू कर देता है। अक्सर अपने पेरेंट्स से वह बॉन्डिंग नहीं बन पाती है जो वास्तव में उसके बीच होना चाहिए। लगातार बच्चे को ब्लेम करने से उसके मन में अपने पेरेंट्स के लिए एक नेगेटिव इमेज बनती है। कई बार जब पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ समझाना चाहते हैं तो वो वास्तव में उन्हें एक लंबा लेक्चर देते हैं जिसमें कई बातों को एक साथ शामिल करते हैं। आप यकीनन बच्चों को कुछ ऐसा समझाना चाह रहे हो, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि बच्चा अभी इतना मैच्योर नहीं है, वह आपकी गहराई समझ नहीं पा सकता है। इसीलिए आपको घुमा फिरा के बात करने से बचना चाहिए। बेहतर होगा कि आप उससे एक बारे में एक ही विषय पर बात करें। अगर आप इसे सीधे तौर पर अपनी बात नहीं समझा सकते हैं तो ऐसे में आप उसे एक कहानी के जरिए अपनी बात सिखा सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा कम्युनिकेशन मिस्टेक है जिसे हर पेरेंट को बचना चाहिए। स्पष्ट वशिष्ठ रहे और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करे। दयालु भाषा का प्रयोग आपके बच्चों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करने में मदद करता है। याद रखें, बातचीत से आपके नन्हे मुन्ने को सम्मान और प्यार का एहसास होना चाहिए। इसी के साथ ही आज का लम्हे प्रोग्राम यही खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपने आरजे चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित और प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी अपनी फिल्म अमर प्रेम का ये गीत सुना। गीत आनंद बख्शी का था और धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने।

दोस्तों, नटखट कान्हा की मुस्कान, माखन की मिठास और बांसुरी की मधुरतान। आज का दिन है प्रेम, भक्ति और उल्लास का। आइए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर हम रंग जाएं कान्हा के उस प्यारे रंग में। ये आवाज है शोभा गुरटू की। आप सुन रहे हैं मीराबाई का ये भक्तिपथ।

प्रीत निभाजियो जी, तो इन शब्दों में एक भक्त का समर्पण भी दिखाई देता है और एक प्रेमिका का मधुर आग्रह भी। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में संत मीराबाई का ये भक्तिपद। संगीत दिया है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

अनूप जलोटा के संगीत निर्देशन में राजेश जौहरी का लिखा एक भक्ति पद सुनिए, आवाज पामेला सिंह की है।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग, और आज का ये कार्यक्रम हमने भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया है। आइए एक बहुत ही सुंदर राजस्थानी रंग वाला मीराबाई का भक्ति पद आपको सुनवाते हैं, श्याम माने जाकर राखू जी। इसमें मीरा कृष्ण से कहती है कि मुझे अपना सेवक बना लो।

मैं वृंदावन में रहकर तुम्हारे दर्शन कर सकूं और तुम्हारी लीलाएं गा सकूं। दोस्तों, ये पद राजस्थानी रंग वाले अत्यंत मधुर पदों में गिना जाता है। आइए सुनते हैं वाणी जयराम की आवाज में ये भक्ति पद।

और आइए अब सुनते हैं मधुकर राजस्थानी का लिखा ये भक्ति पद। खय्याम साहब का संगीत है और स्वर मोहम्मद रफी का।

कोई। संत मीराबाई का लिखा भक्ति पद अभी आपने सुना MS सुबुलक्ष्मी की आवाज में। दोस्तों, भगवान कृष्ण को हम सभी ने अपनी अपनी नजरों से देखा, चाहे राधा हो, मीराबाई हो, रुक्मणी हो, गोपियां हो, ग्वाले हो, सभी ने कृष्ण को देखा, चाहा, अपनी अपनी नजर से समझा। लेकिन संत सूरदास ने भगवान कृष्ण को कैसे चाहा, कैसे समझा? सूरदास की दृष्टि में कृष्ण का नाम ही वो मधुर संगीत है जिसमें डूबकर भक्त संसार के सारे दुख भूल जाता है। संत सूरदास ने अपने पदों में बाल कृष्ण की नटखट छवियों से लेकर उनके दिव्य और करुणामय स्वरूप तक कृष्ण को प्रेम के हर रंग में देखा है। और संत सूरदास के लिए कृष्ण केवल आराध्य नहीं, बल्कि उनके जीवन की आंखें और उनके हृदय की ज्योति थे। तो आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में संत सूरदास का ये भक्ति पद।

श्रोताओं, कृष्ण की बांसुरी, हाँ कृष्ण की बांसुरी केवल संगीत नहीं थी, वो एक प्रेम की पुकार थी जो हर हृदय तक पहुंचती थी। और कहते भी है ना कि जब श्याम अधरों पर बांसुरी रखते हैं तो वृंदावन की गलियां भी जो है महक उठती हैं, और ऐसे में सभी का जो मन है वो ठहर सा जाता है, है ना। शायद इसीलिए आज भी जब कोई स्वर गूंजता है, श्याम तेरी बांसुरी पुकारे राधा नाम, तो लगता है कि प्रेम की वही अनंत पुकार आज भी हमारे मन के वृंदावन में गूंज रही है। तो इसी मधुर बांसुरी की तान के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है गीत गाता चल, आवाजें आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की, गीतकार और संगीत

और अब आज का रंग तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम अभिनेता ऋषि कपूर को और गायक संगीतकार आदेश श्रीवास्तव को याद कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल, लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजें। फिल्म का नाम है बॉबी।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था कभी कभी। साहिर लुधियानवी के बोल थी, खय्याम साहब का संगीत था। और अब लेते हैं इस कार्यक्रम में एक अंतराल।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए। गाने वाले कलाकार किशोर कुमार और साथी, फिल्म का नाम कर्ज़।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार

0: शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: कार्यक्रम का अगला गीत सुरेश वाडकर की आवाज में, फिल्म का नाम है प्रेम रोग। गीत रचना संतोष आनंद की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

कार्यक्रम का अगला गीत शिव हरि का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल, आशा भोंसले और विनोद राठौड़ की आवाजें। फिल्म का नाम है चांदनी।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी।
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है 11।

0: बालर इवन जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं, और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंदाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
1: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से। मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत आदेश श्रीवास्तव और वसुंधरा का गाया हुआ, फिल्म का नाम है आंखें। गीत को प्रसून जोशी ने लिखा है और धुन आदेश श्रीवास्तव की है।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आदेश श्रीवास्तव के संगीत निर्देशन में हम आपको समीर का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है राजनीति, आवाजें आदेश श्रीवास्तव, शशि और साथियों की।

ये आवाजें थीं आदेश श्रीवास्तव, शशि और साथियों की। फिल्म का नाम था राजनीति। गीतकार थे समीर और संगीतकार आदेश श्रीवास्तव। इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? हाँ, बिल्कुल अच्छे होंगे। तो चलिए सुरीले सफर पर निकल पड़ते हैं आज फिर। और आज इस सफर में हम थोड़ा सा कवितामय हो जाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ, आप समझ गए मेरा इशारा, क्योंकि संगीत की दुनिया में कुछ गीत ऐसे लिखे गए हैं दोस्तों, जिनके शब्दों में कविता की सुगंध है, भावों की गहराई है, और आप इस कार्यक्रम में सुन पाएंगे वही गीत, कुछ ऐसे ही फिल्मी गीत जिनमें हिंदी कविता अपनी पूरी गरिमा और मधुरता के साथ खिल उठी है। तो आइए शब्दों और सुरों के इस खूबसूरत संगम में हम खो जाते हैं और चलते हैं इस सुरीले सफर पर। हमारे दोस्तों ने कहा है कि आज भी इबारत मंदाकिनी जी ने लगता है रात भर जागकर लिखी है, हम इसे कैसे पढ़ पाएंगे, इसका जवाब देने में तो हमें घंटों लग जाएंगे। तो आपको इस इबारत का जवाब देने के लिए कहा किसने था, ये बताइए। हम तो आपसे दो सवाल करेंगे, उसका जवाब आपको देना है, और इबारत पढ़कर आपके दिलो दिमाग में जो विचार आए वो लिखने हैं। तो इबारत पढ़ने में बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं लगा होगा मुझे लगता है। चलिए हम टुकड़ों में आज इसे पढ़ते हैं, क्योंकि सफर है और हमें कविता में भी होना है। हमने आपके लिए लिखा था कि हिंदी कविता में प्रेम केवल किसी को पाने का नाम नहीं है, प्रेम में श्रद्धा है, समर्पण है, प्रतीक्षा है, विरह है, और एक दूसरे के अस्तित्व में अपना संसार खोज लेने की भावना भी है। तो जब कोई कवि अपने प्रिय को केवल प्रिय नहीं बल्कि अपने प्राणों की अधिष्ठात्री, अपने हृदय की स्वामिनी या प्रिय प्राणेश्वरी मान लेता है, तब प्रेम

0: कविता बन जाता है और प्रेम का दूसरा रूप हम कहते हैं प्रतीक्षा को। हाँ, कभी प्रिय सामने नहीं होता, लेकिन उसकी अनुपस्थिति हर क्षण, हर पल, हर क्षण सालती रहती है। मन प्रश्न करता है, आंखें खोजती हैं और हृदय पुकारता है, तू छुपी है कहाँ। और ये केवल विरह का गीत नहीं बल्कि प्रतीक्षा की कविता है। और इसी प्रेम में जब रंग जुड़ता है प्रकृति का, प्रकृति जुड़ती है, कल्पना जुड़ती है, तब शब्दों में चित्र बनने लगता है। कितना अद्भुत लगता है तब कि कवि फूलों के रंग को दिल की तरंग से जोड़ देता है। और यही कविता की शक्ति है, जहाँ प्रकृति बाहर नहीं रहती, हमारे भीतर उतर जाती है। बस उसे महसूस करना होता है। और हाँ, कविता का दूसरा रंग है प्रकृति। हिंदी कविता और प्रकृति का संबंध बहुत पुराना है। फूल, पत्ते, ऋतु, आकाश, चांदनी और जल केवल दृश्य नहीं रहे, बल्कि हिंदी कविता में ये भावों के प्रतीक भी बन गए। तो कवि कहता है, क्या कहता है, स्वप्न झरे फूल से। आहा, कितना प्यारा गीत है। तो कवि केवल फूल झरने की बात नहीं करता, वो स्वप्न के टूटने और जीवन के क्षण भंगुर सौंदर्य को एक साथ हमारे सामने रखने की बात करता है कि स्वप्न भी फूलों की तरह है, सुंदर, कोमल, क्षणिक, और शायद इसी क्षणिकता में उनका सौंदर्य भी छिपा हुआ है। तो चलिए, ये इबारत का हमने पहला भाग पढ़ा है, क्योंकि इस सफर पर हम निकल पड़े हैं और गीत का आनंद भी हमें लेना है। तो करते हैं शुरुआत, क्या कहते हैं आप
1: प्रिये?
0: हम भी श्री गणेश करें इस सफर का।

को बता दें, किशोर कुमार की आवाज में आपने फिल्म हम तुम और वो का गीत सुना। गीतकार वर्मा मलिक थे और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी थे। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इस विस्तृत सुंदर सी इबारत के अनुसार कविता केवल शब्दों का सुंदर संयोजन नहीं बल्कि मन के भीतर उठने वाली उन भावनाओं की आवाज है जिन्हें हम अक्सर कह नहीं पाते। इसमें कम शब्दों के माध्यम से गहरे भावों और विचारों को व्यक्त किया जाता है। इसमें शब्दों का ऐसा क्रम होता है जो सुनने में संगीत जैसा लगता है। कविता का एक सुंदर संसार प्रकृति भी है, लेकिन कविता केवल प्रेम और प्रकृति तक सीमित नहीं रहती। वो जीवन के रास्तों पर भी हमारे साथ चलती है। धूप हो या छाव, साथ हो या अकेलापन, वो हमें रुकने के बजाय चलते रहने और जीवन को गीत की तरह जीने की प्रेरणा भी देती है। इबारत में बहुत सारे लोकप्रिय गाने भी हैं और आपने उन लोकप्रिय गानों का जिक्र किया भी है। देखिए ना, हमने इबारत लंबी लिखी लेकिन साथ में कोशिश यही की कि उस इबारत में छिपे गीत संगीत को आप पहचान लें, और आप लोगों ने पहचान भी लिया। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत तो इबारत नहीं है, इबारत 5-10 पंक्तियों की होती है। आपने तो पूरा निबंध लिखा है और उस अंत में गीतों के बोल लिख दिए, जैसे प्रिय प्राणेश्वरी या और बहुत सारे गीतों का। आप इसे जिस अर्थ में देखना चाहें ये आपकी पसंद है ना। हमने तो कोशिश की है कि जो कार्यक्रम आज हम लेकर आए हैं, यानी ऐसे गीत जो लिखे गए फिल्मों के लिए लेकिन जिनमें कविता रही, कविता की सुगंध मिली, भावों की गहराई मिली, हमने उन गीतों का चयन आज किया है। और उन गीतकारों ने फिल्मी गानों को हिंदी कविता के रूप में जो पेश किया वो बहुत ही लाजवाब रहा है उनका ये प्रयास। तो आज का ये कार्यक्रम हमने उन्हीं गीतों पर केंद्रित रखा है, तो जाहिर है बात कहने का अंदाज भी थोड़ा सा तो खुला होना ही होगा ना। किसी बात को समझाने के लिए आप उसके तह तक नहीं जाएंगे तो क्या लिख पाएंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लंबे अंतराल के बाद सुरीला सफर लेकर आ रही छोटी बहना मंदाकिनी जी के साथ सभी मित्रों को आज बहुत बहुत शुभकामनाएं, और लंबे अंतराल की तरह आज आपने इबारत बड़ी और लंबी डाल दी है। इस पर फिल्म आनंद में राजेश खन्ना द्वारा बोला डायलॉग याद आ गया, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। क्या बात है। तो आज का कार्यक्रम भी बड़ा है, देखिए ना कितनी बड़ी बात लेकर हम आए हैं कि जीवन में कविता क्या मायने रखती है। और फिल्मी दुनिया में जहां हर तरह के गाने लिखे गए हैं वहां पर भी हिंदी कविता कितने खूबसूरत रूप में लिखी गई है, सुनी गई है, समझी गई है, सराही गई है। क्या आप इसे बड़ा नहीं मानते। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत दिनों के बाद सुरीला सफर लेकर आई हैं आप, आपका हार्दिक स्वागत है। नवरसों का आविष्कार, चित्रदर्शी शब्दशैली, शिल्पदर्शी रचना, सुगमता, छंद, लय को लेकर आई, कविता के भीतर जो सौंदर्य, भाव और संदेश मिलता है वो हमें संक्षिप्त में बहुत कुछ कह देता है। बहुत सुंदर। एक श्रोता ने कहा, आपके अनुपम सुंदर निबंध से चुने हुए कुछ गीत हैं जो हमें बेहद पसंद है। आपने उन गीतों का जिक्र भी किया है, यकीनन यही गीत आज बजने वाले हैं क्योंकि हमने आपको बहुत ही सरल शब्दों में उन गीतों को डालकर आज की इबारत बनाई थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कविता के बारे में क्या कहें, कविता के बारे में सामान्य लंबाई में लिखी कविता होती है, बहुत ज्यादा लंबी हो जाए तो महाकाव्य कहलाती है, और न गा सको तो अतुकांत कविता कहलाती है, और कहीं ठिगनी रह जाती है तो हाइकू कही जाती है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आप बहुत दिनों बाद आई हैं और इतनी बड़ी और प्यारी सी थीम के साथ, और हमारा शामिल होना मुश्किल सा लगता है, क्यों, क्या बात है, आप इस कार्यक्रम में हमारे सफर में आज साथ नहीं चलेंगे, बताइएगा हमें। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत को पढ़ने से अच्छा है आपके मधुर स्वर से ग्रहण कर लेना, क्योंकि इसमें भी एक भाव है जिसे पढ़कर नहीं सुनकर अपने मन में समाहित कर लिया जाएगा। बहुत सुंदर बात है, आप हमें सुन लीजिए, हम तो यही चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा और सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म नई उम्र की नई फसल का गीत। और जब हम इबारत पढ़ रहे थे तो इन शब्दों का, इन पंक्तियों का जिक्र उसमें आया था और आपने भी पहचान लिया था कि यही गीत बजने वाला है। गीतकार है नीरज।

नई फसल। और हाँ, अब हम पढ़ते हैं हमारी इबारत का ये दूसरा भाग, क्योंकि आज आप शिकायत कर रहे हैं कि हमारी इबारत बहुत लंबी है, तो हमने भी सोचा इसे टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ दिया जाए ताकि आपको बोझिल न लगे। तो अब तक जो आपने गीत सुना वो हमारी इबारत में आ चुका था, यानी नई उम्र की नई फसल का गीत आ गया ना। आगे हमने लिखा था कि प्रकृति का एक और उज्जवल, पवित्र और आध्यात्मिक रूप हमें मिलता है। यहाँ प्रकाश केवल प्रकाश नहीं है, वो आशा है, चेतना है, मंगल है और जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक है। हाँ, ज्योति कलश है वो। समझ आया कुछ? कवि जब शब्दों से प्रकाश को एक कलश में भर देता है ना, उसे छलकने देता है, तब भाषा साधारण भाषा नहीं रह पाती, वो कविता बन जाती है। और फिर प्रकृति का वही रूप तो एक चित्रकार की कूची से बना हुआ लगता है, क्या चंचल, शीतल, निर्मल और कोमल। समझ गए आप? ये चार शब्द और चारों शब्दों में है पूरा संसार, चंचलता, शीतलता, निर्मलता और कोमलता। और हिंदी कविता की यही विशेषता है कि कभी कभी कुछ विशेषण ही पूरे दृश्य को जीवित कर देते हैं। और जब ये दृश्य इतना सुंदर हो जाए कि मन स्वयं से प्रश्न करे कि कौन चित्रकार है, तब हम समझते हैं कि प्रकृति को देखने के लिए केवल आंखें नहीं, कवि मन चाहिए। और कविता केवल फूल और प्रेम की बात नहीं करती, कविता जीवन को भी देखती है, उसके रास्तों को भी समझती है और मनुष्य को चलते रहने की प्रेरणा भी देती है। क्योंकि जीवन में कभी धूप है, कभी छांव है, कभी साथ है, कभी अकेलापन है। तो कवि कहता है, रुकना नहीं है, चलते रहो, गाते रहो, जीवन के सफर को गीत बनाते रहो। गीत गाता चल ओ साथी, गुनगुनाता चल भाई। ये गाते हुए गुनगुनाइए, जैसे कि आज सुरीले सफर में हम गुनगुनाते हुए चल रहे हैं। और ये केवल गीत नहीं है बल्कि जीवन जीने का मंत्र है। और हर यात्रा चूंकि आसान नहीं होती, लेकिन अगर मन में गीत है, साथ में मुस्कान है, तो कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। और हिंदी कविता की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वो गूढ़ दर्शन को भी सरल शब्दों में कह देती है। तो भारतीय काव्य परंपरा में प्रकृति केवल दृश्य नहीं, परिवार है। धरती केवल मिट्टी नहीं, माँ है। आकाश केवल विस्तार नहीं, पिता है। जब यही सब भाव उतरते हैं तो क्या होता है, धरती कहीं पुकार के एक खूबसूरत कल्पना जन्म लेती है और यही कविता बन जाती है और कविता बनकर गीतों के रूप में ढलती भी है। जी, तो आज की इबारत तो हमने आपके सामने रख दी है। और वो श्रोता जो हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़ पाते हैं, वो इस इबारत को समझ चुके होंगे कि आज की इबारत क्या कहती है। जी हाँ, आज हमने कुछ ऐसे गीतों को चुना है जिनके शब्दों में कविता की सुगंध है। गीत तो हम बहुत सारे सुनते हैं, लेकिन जहाँ हिंदी कविता आ जाती है, हिंदी कविता लिखी गई है, कुछ खास गीतकार हैं जिन्होंने हिंदी कविताएं लिखी हैं, पंडित भरत व्यास, नीरज, रविन्द्र जैन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फिल्मी गीतों में हिंदी कविता को स्थान दिया है। गीतकार योगेश ने बहुत सारे ऐसे गीत लिखे हैं। तो आज हमारे दो सवाल आपके लिए ये हैं कि आपकी पसंद का वो कौन सा फिल्मी गीत है जिसे आप केवल गीत नहीं बल्कि एक सुंदर कविता मानते हैं। और हमारा दूसरा सवाल कि हिंदी के किस कवि की पंक्तियां, गीतकार की रचनाएं आपको सबसे ज्यादा पसंद है और कौन सी पंक्तियां आपको आज भी याद है। केवल दो पंक्तियां आपको बतानी है। जैसे अगर आप मेरी बात करेंगे तो मुझे रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कविता जो रश्मि रथी है ना, उसमें से ली गई जो पंक्तियां हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण की चेतावनी है दुर्योधन को, ध्यान है ना, अंतिम संदेश के रूप में, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। ये पंक्तियां मुझे बेहद पसंद है। या कि ये भी कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो आपको भी ऐसी कुछ पंक्तियां याद होंगी, चाहे वो फिल्मी गानों के रूप में या फिर साहित्य, जो हिंदी साहित्य आपने पढ़ा होगा अगर, या पढ़ने के शौकीन जो हमारे श्रोता हैं, उन्हें कुछ पंक्तियां याद होंगी, उनका जिक्र कम से कम शब्दों में आपको करना है। आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म भाभी की चूड़ियां का गीत। गीतकार है पंडित नरेंद्र शर्मा और संगीत दिया है सुधीर फड़के ने।

अभी आप सुन रहे थे ये सुंदर सी एक कविता ज्योति कलश छल के, और आपने देखा कि प्रभात और प्रकृति के सौंदर्य को शुद्ध हिंदी कविता के रूप में पंडित नरेंद्र शर्मा ने कितनी खूबसूरती के साथ चित्रित किया है। उन्होंने उषा, आकाश, बादल, धरती, फूल और प्रकाश को मतलब ऐसे काव्यात्मक बिंबों में पिरोया है कि ये गीत सुनने से अधिक तो लगता है जैसे एक सुंदर सी कविता हमने लिख डाली है। तो बहुत ही खूबसूरत गीत अभी हमने आपको सुनवाया। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्यार एक साधना है जहां प्रतीक्षा का हर पल विरह के दर्द से अलग होता है। जैसे कोई कवि शब्दों को सहेज कर कविता बुनता है, वैसे ही प्रेमी प्रतीक्षा के हर पल को यादों को सजाता है। जब हवाएं चलती है, नदियां बहती है, फूल खिलते हैं, तो प्रकृति का प्रेम ही है जो व्यक्त हो रहा होता है। बारिश की पहली बूंद जब मिट्टी में मिलती है तो उठने वाली सौंधी खुशबू प्रकृति के प्रेम का ही संगीत है। प्यार एक ठहराव है, एक सुकून है जो इंसान को खुद से और पूरी से जोड़ देता है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के गद्यांश में तो अलग अलग विषयों की रिमझिम रिमझिम बूंदों की बारिश सी कर दी है आपने। अलग अलग रूपकों को सोच समझकर उनसे जुड़े सारगर्भित और बेहतरीन गीतों का गुलदस्ता सब बना दिया है। वाकई आपने हमारी इबारत को सही ढंग से समझा है, वरना तो हमारे श्रोता शिकायत ही कर रही है क्या कुछ हम क्या कहें। आपने बिल्कुल सही कहा कि अलग अलग रूपकों को सोच समझकर उनसे जुड़े जो सारगर्भित और बेहतरीन गीत हैं उनको हमने चुना और उसी अर्थ में हमने आज की इबारत आपके लिए पेश की थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आप बहुत समय बाद आ रही हैं। आज तो बहुत ही लंबा पोस्ट आया है, बहुत समय लगा होगा इसे लिखने में। छुट्टी से जाकर पहले इसे ही पोस्ट करूंगी और इस पर प्रोग्राम करूंगी, ऐसा आपने सोचा होगा, है ना मंदाकिनी जी? ना ना ना, बिल्कुल नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। और हमें पता है आज हमें ये कार्यक्रम पेश करना है, तो हमने कल सोचा आपके लिए इस कार्यक्रम को और आज लेकर उपस्थित हो गए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे

मन में कई भाव उत्पन्न होते हैं कि प्रेम, प्रतीक्षा, विरह, वेदना, खुशी, गम को कविता के रूप में कवि अपनी शैली में पिरोते हैं। प्रकृति से जोड़कर सुंदर शब्दों में विस्तार देता है, जिससे इन भावों को समझकर हम धारा में बहने लगते हैं और हमें संगीत जैसा प्रतीत होता है। चंचल, शीतल, निर्मल, कोमल जैसे जो गीत हैं वो इसी धारणा से लिखे गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का गद्यांश तो बहुत बड़ा है, प्रेम समर्पण कविता, प्रतीक्षा, अन्न, सपना आदि शब्दों को पिरोकर सजाया गया है और आज का सुरीला सफर मिलते हैं आपसे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कविता का सबसे सुंदर सत्य यही है कि वो प्रेम से शुरू होकर अंततः आत्मा तक पहुंचती है और श्री कृष्ण इस यात्रा के सबसे सुंदर प्रतीक हैं। कृष्ण का प्रेम केवल पाने का नहीं, अपने प्रिय के अस्तित्व में स्वयं को विसर्जित कर देने का है। राधा की प्रतीक्षा में वही विरह है, वृंदावन की प्रकृति में वही माधुर्य और गीता के शब्दों में वही जीवन को चलते रहने का संदेश। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रेम मिलन में जितना है उतना ही विरह में भी है, प्रकृति में जितना है उतना ही आत्मा में भी है। कभी वे बांसुरी बनकर मन को पुकारते हैं, कभी सारथी बनकर कर्म का रास्ता दिखाते हैं और कभी भीतर से आवाज देते हैं, चलते रहो, अपना धर्म निभाते रहो। बहुत सुंदर। तो आज के प्रश्न आपके सामने एक बार फिर हम दोहरा देते हैं। हमारा पहला सवाल था कि आपकी पसंद का वो कौन सा फिल्मी गीत है जिसे आज आप केवल गीत नहीं बल्कि एक सुंदर कविता मानते हैं, जैसे कि आज कुछ गीत हमने चुने हैं सुंदर कविता के रूप में। और हमारा दूसरा सवाल था कि हिंदी के किस कवि की या किस गीतकार की रचना आपको सबसे ज्यादा पसंद है और कौन सी पंक्तियां आपको आज भी याद है, जैसे हमें रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी की जो पंक्तियां हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने एक तरह से चेतावनी दी थी दुर्योधन को अंतिम संदेश के रूप में कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। ये पंक्तियां मुझे बहुत पसंद आती है। और एक और जैसे जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो ये पंक्तियां आज भी हमारे दिलो दिमाग पर अंकित हैं और ताउम्र रहेंगी। तो आपके जीवन में ऐसी कौन सी काव्य पंक्तियां हैं जिन्हें आप नहीं भूल पाए हैं? सुरीला सफर के इस सफर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं जसपाल सिंह की आवाज में फिल्म गीत गाता चल का ये सुंदर सा काव्यात्मक गीत। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन, जिन्होंने बहुत सारी कविताएं फिल्मी गीतों के रूप में हमें दी हैं।

जी हाँ, तो रविंद्र जैन का ये जो गीत है प्रकृति और जीवन के प्रति कितने सुंदर तरीके से लिखा गया है, जिसमें धरती को माँ, आकाश को पिता और पूरी सृष्टि को परिवार मानने का भाव है। यानी कितनी सुंदर कविता एक मनुष्य और प्रकृति के आत्मीय रिश्ते को लेकर रविंद्र जैन साहब ने लिखी। तभी तो इन गीतों को आज भी हम सुनना पसंद करते हैं, गुनगुनाना पसंद करते हैं, और यूं कहें कि ये गीत अमर से हो गए हैं, है ना? क्योंकि हिंदी कविता जो एक कवितामय गीत लिखे गए, जहां हमें कविता की सुगंध, कविता का रसास्वादन भी होता है। हमारे श्रोताओं ने अपने विचार हम तक पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपने बहुत पावन प्रेम इबारत पेश की है। कृष्ण तो प्रेम के साकार रूप हैं, वे पराक्रम के प्रवर्तक भी हैं। उनकी गीता हमारा आत्मविश्वास और आत्मज्ञान बढ़ाती है। जन्माष्टमी पर आपने सभी को बधाई दी है। देखिये, हमने तो 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम में आपके लिए खास कार्यक्रम भी पेश किया था, जो कि श्री कृष्ण को समर्पित किया। हमने उन्हीं के भजन भक्ति पद आपके लिए पेश किए थे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं ने उस कार्यक्रम को सुना होगा। वहीं एक श्रोता लिखती है कि हमें स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, ये पंक्तियां जो कवि गोपालदास नीरज की हैं, वो सबसे ज्यादा पसंद हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर की हिमालय इतनी सुंदर है कि उसको आज तक भूल नहीं पाते हैं मंदाकिनी जी। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चंचल, शीतल, निर्मल, कोमल, संगीत की देवी, स्वर सजनी, ये पंक्तियां जो है फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से, ये इन्हें बेहद पसंद आती हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा कविता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के, है ना, वो कविता इन्हें बेहद पसंद आती है। और एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे स्कूल में पढ़ी जयशंकर प्रसाद की द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी की पंक्तियां याद आ रही हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ये इन्हें पंक्तियां बेहद पसंद आती है और इन्हें आज भी याद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि तुम गगन के चंद्रमा, मैं धरा की धूल हूं, कोरा कागज था ये मन मेरा, ये पंक्तियां इन्हें बेहद अच्छी लगती है। वहीं एक श्रोता को चंदन सा बदन, ये पंक्तियां बेहद पसंद आती हैं फिल्मी गीत के रूप में। और एक श्रोता ने लिखा है कि सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम, ये पंक्तियां जो हैं गीत की इन्हें बेहद पसंद आती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपका जो सवाल है उसका जवाब, यानी प्रश्न जो पहला था उसका जवाब दे रही है कि कवि सोहनलाल द्विवेदी जी की कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ननी चिट्ठी जब दाना लेके चलती है, ये संदेश इन्हें बेहद पसंद आता है। और हमारे दूसरे सवाल का जवाब देती हैं कि कवि प्रदीप जी, सचिन दा, नीरज जी और भी बहुत से गीतकार हैं जिनके प्रेरणादायक गीत इनको पसंद आते हैं। बहुत सुंदर पसंद है हमारे श्रोताओं की। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिल्म नवरंग का ये सुंदर सा गीत आपको सुनवाते हैं। आशा भोंसले और मन्ना डे का गाया हुआ, पंडित भरत व्यास के बोल हैं। जी हाँ, पंडित भरत व्यास, जिन्होंने न जाने कितने गीत हिंदी कविता के रूप में लिखे हैं और इसे संगीत में ढाला है सी रामचंद्र ने।

ये कौन घुंघर झमका, ये कौन चांद चमका, ये धरती पे आसमान आ गया पूनम का, ये कौन फूल महका, ये कौन पंच चहका, महफिल में कैसी खुशबू उड़ी, दिल जो मेरा बहका, लो तन में जान आई।

चांदनी में करके स्नान आई, बिछड़ा वो मीत आया, जीवन का गीत आया, दो आत्माओं के मिलन का दिन पुनीत आया। सूरत है मेरे सपनों की तू सोहिनी, जमुना तू ही है, तू ही मेरी मोहिनी, तेरे बिन फीका फीका है दिल का जहां।

हमारे श्रोताओं ने सवालों का जवाब देना शुरू भी कर दिया था और अभी भी लगातार दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हिंदी कविता में रुचि रखते हैं, यानी आपके भीतर भी कविता बहती है किसी न किसी रूप में। एक श्रोता ने लिखा है कि हाँ, ये तो हमने पढ़ दिया था, आप लिखते हैं कि आज की इबारत अलग अलग मोड़ के गीतों से आपने बुनी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे गीतकार शैलेन्द्र और पंडित प्रदीप जी के गीत बहुत अच्छे लगते हैं, और सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, और पंडित प्रदीप जी देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, ये पंक्तियां इन्हें बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे फिल्म कादम्बिनी का वो गाना जिसे अमृता प्रीतम ने लिखा था आशा भोसले की आवाज में, अंबर की एक पाक सुराही, ये बहुत पसंद है। बहुत सुंदर गीत चुना है आपने। एक श्रोता लिखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की कविता का अंश जो है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, ये पंक्तियां इन्हें बेहद पसंद आती है। वहीं श्रोता एक लिखती है कि मेह बरसने वाला है मेरी खिड़की में आजा तितली, महादेवी वर्मा जी की कविता है और इन कविताओं से ये प्रभावित हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ज्योति कलश छलके का मतलब है ज्योति का प्रकाश कर और बिखरे, अंधेरा गायब हो जाए अर्थात बुराई पर अच्छाई की जीत हो, ये पंक्तियां इन्हें प्रभावित करती हैं। वहीं एक श्रोता को अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, गोपाल दास नीरज की पंक्तियां इन्हें बहुत पसंद है। एक श्रोता को महादेवी जी की कविता मैं चंदा तू चांदनी ये पंक्ति बहुत पसंद है। वहीं पंडित भर व्यास जी के बारे में एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी कविता के माध्यम से फिल्मी गानों को उन्होंने स्वर्णिम युग दिया है, रामराजे फिल्म का लता जी का गाया एक गाना पंडित भरत व्यास जी का लिखा हुआ बहुत ही सुंदर है, सोजा सोजा यानी नींद के समय का ये अद्भुत गीत है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाह वाह प्रकृति सौंदर्य का जीवंत सुंदर चित्रण इस गाने में अनुपम है, ज्योति कलश छलके अंतिम अंतरा में ज्योति यशोदा घर की गैया सुनते ही बनता है, भाव विभोर कर देता है ये गाना, बिल्कुल। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मुझे एक पंक्ति बहुत अच्छी लगती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, अरे बस इतना ही। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखूं उतला, लाल लई देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल, ये पंक्तियां इन्हें बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भाभी की चूड़ियां का ज्योति कलश छलके ये कविता रूपी जो गीत है वो पसंद करते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि प्रिय विविध भारती परिवार आपका ये कार्यक्रम सुरीला सफर बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक है, धन्यवाद। एक श्रोता लिखते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये पंक्तियां इन्हें पसंद आती हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी आज का आपका विषय बहुत ही सुंदर है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि विशुद्ध हिंदी शब्दावली गीत से कार्यक्रम का श्री गणेश अति उत्तम शुभारंभ, श्रोतागण हर्षित फुल हो मुग्ध हो गए हैं, अरे वाह। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी आपको और समस्त श्रोता मित्रों को हम नमस्कार करते हैं, आज आप बहुत दिनों बाद उपस्थित हुई हैं। हो गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और कविता का आनंद लेते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल हैं, आवाज मुकेश की, और फिल्म का नाम सत्यम शिवम सुंदरम।

जी बहुत ही मधुर गीत अभी हमने सुना और कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक हम पहुंच गए हैं। हमारे श्रोता कुछ श्रोता हमसे कुछ पूछ रहे हैं कि क्या बात है आप कई दिनों के बाद सुरीला सफर पर आए हो। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि तुम छुपी हो कहां, हम आपकी आवाज सुनने को तड़प रहे हैं यहां। एक श्रोता लिखते हैं बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत तक है श्रोता समूह वाला, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए आपके। हुए ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप कार्यक्रम में आ गए हो तो और भी अच्छे हो गए हैं हम। अरे वाह क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि कविता की शक्ति को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है लेकिन आपने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है। नहीं नहीं ये आपकी गलतफहमी है, हमने तो आपको कुछ नहीं समझाया बल्कि एक कार्यक्रम लेकर आपके साथ सुरीले सफर पर निकल पड़े हैं, बस इतना ही ताकि जीवन में थोड़ा सा हम भी कवितामय हो जाएं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत दिनों के बाद सुरीला सफर लेकर आई हैं क्या बात है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपके अनुपम सुंदर निबंध से चुने हुए कुछ गीत हमें आज बेहद पसंद आए हैं क्या बात है। हमारी इबारत को आज श्रोताओं ने निबंध कह दिया है, किसी ने कहा है कि पूरी रात जग कर लिखी है आपने, किसी ने कहा है कि आज पूरा दिन लग जाएगा इस इबारत को पढ़ने और जवाब देने में। चलिए आप जैसा समझे सर आंखों पर, आपकी हर बात आपका हर भाव, बस यही होना चाहिए कि इस तरफ से हमारी जो कोशिश है वो कम नहीं होनी चाहिए और आपकी तरफ से क्या आपका प्यार कम नहीं होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम का अंतिम गीत आपके लिए प्रदीप की आवाज, फिल्म का नाम नास्तिक, गीतकार प्रदीप और संगीत सी रामचंद्र का।

दोस्तों, कवि प्रदीप द्वारा कविता की शैली में लिखा गया यह गीत देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, मानवता को आईना दिखाने वाली एक मार्मिक कविता के रूप में लिखा गया है। आप क्या सोचते हैं बताइएगा कवि। फिलहाल सुरीला सफर कार्यक्रम से अब मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: सखियों सहेलियों नमस्कार, हम आ गए आपका मनपसंद कार्यक्रम लेकर। हेलो सहेली, मैं हूँ आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक। इंतजार कर रही हूँ आपके फोन कॉल का। मेरा इंतजार हुआ खत्म, ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारे

0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: हम नीता मिश्रा बोल रहे हैं
0: जी। कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: जी हम रहते थे लखीमपुर खीरी में, लेकिन इस समय अपने भाई के यहाँ आए हैं, शाहजहानपुर पास में ही है।
0: भाई के यहाँ आए हैं, रक्षाबंधन मनाने आए हैं आप?
1: जी जी
0: जी। बताइए नीता जी, अपने बारे में बताइए।
1: हमारे 6 भाई हैं, तो भाई बात सभी भाई तो पहुँच नहीं सकते हमारे घर, इसलिए हम यहाँ पर आया था। तो सारे भाइयों की राखी बन जाती है, रचना हो जाता है, इसलिए ज्यादातर हम ही आते हैं यहाँ।
0: क्या बात है, बहुत अच्छे हैं आपके जीवन में। अभी खुशियों के दिन आ रहे हैं जब हम भाई के घर जाके रक्षाबंधन मना रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। और आज आपका पहला फोन कॉल भी लग गया है, तो इसमें यानी सोने पे सुहागा हो गया है ना। अपने बारे में बताइए।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ
0: जी।
1: मेरे हस्बैंड हैं, मेरे ससुर हैं हम
0: जी,
1: और मेरी ननद, उनकी शादी हो चुकी है। फिलहाल हम 3 लोग रहते हैं घर पे
0: जी। और बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम सुनना चाहते हैं काजल फिल्म का गाना है, मेरे भैया मेरी चंदा मेरे अनमोल रतन।
0: चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, बताइए
1: हेलो सहेली, बड़ोदा
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: से शारदा बेन नागरेचा ने।
0: बड़ौदा से शारदा बेन बात कर रही है। बताइए
1: हाँ,
0: शारदा बेन, आप क्या करती हैं?
1: बहुत सारी एक्टिविटी करती हूँ, गाना गाती हूँ, म्यूजिक का बहुत शौक है, रसोई का, और एक्टिविटी में फ्लावर बनाती हूँ, तेज
0: अरे वाह,
1: पत्ते में से, पिस्ता में से, और जो
0: यानी
1: आचार के गुंदे आते हैं ना, गुंदा अथाना, वो भी ईसा वाला त्रोफान, लीला नारियल आता है ना, लीला नारियल ऊपर वाला ईसा,
0: जी
1: उसका फ्लावर बनाता है, उसमें कलर पुरते हैं।
0: वाह वाह वाह, यानी जो हम लोग जो इस्तेमाल करके जो बची हुई चीजें होती है जिसे हम फेंकते हैं, उन्हें आप फेंकती
1: हाँ,
0: नहीं है, उन चीजों से सुंदर सुंदर आप फ्लावर पॉट बनाती हैं, फूल बनाती हैं, है ना?
1: और होटल मैडम राखी आते हैं, राखी के सब सामान मैं रख देती हूँ, इसका भी मैं इस्तेमाल करती हूँ।
0: क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी आदत है आपकी कि
1: हाँ,
0: जिन चीजों से हम कुछ और भी क्रिएटिव कर सकते हैं वो आप कर रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और
1: गाना गाना, भजन कीर्तन सब आता है मैडम।
0: जी, तो कुछ गाकर सुनाइए।
1: खमार खमार आवी ने मारी मटू की फोड़े।

0: કી ફોરે ગોપીઓ ના ઘર માં જઈને લીલાયો કરે શ્યામ આવીને મારી માથું કી ફોરે.
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर आपकी आवाज है और इतनी सुर में आप गाती हैं, तो ऐसे ही गाते गुनगुनाते रहिए. और आप जो क्रिएटिव काम करती है ना, वो भी करती रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए. चलिए बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: नन्हे मुन्हे बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है.
1: बहुत सुंदर गाना आपने चुना है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत.

0: ने फोन लगाया है?
1: जी, मैं उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से बोल रही हूँ, शहनाज अख्तर।
0: शहनाज जी नमस्ते, क्या हाल चाल है?
1: बस बहुत बढ़िया है।
0: और बताइए आप क्या करती हैं?
1: होम गृहिणी हूँ, घर पर ही रहती हूँ।
0: जी,
1: तीन बच्चे हैं मेरे, दो बेटी है एक बेटा है।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, तो हर साल हम 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाते हैं, तो पोषण को लेकर आपके जीवन में क्या महत्व है, यानी कि आप बच्चों को पोषक भोजन किस तरह से देती है, जरा बताइए ना।
1: बच्चों को सुबह में जैसे हलवा नाश्ते में और जूस वगैरह।
0: ये आप बहुत अच्छी बात बताई आपने।
1: पोषण को लेकर मैं ये कहना चाहती हूँ मैडम कि पोषण हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि जिंदगी में जान है तो जहान है, तो हम अपने स्वास्थ्य का हम खुद ही ध्यान रख सकते हैं।
0: बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं आज?
1: जी मैं मैडम, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, खास करके मैं अपने हस्बैंड के लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ।
0: क्या बात है, अपने पति के लिए ये गाना समर्पित है, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी मैं रंजना कुमारी, बिहार शरीफ मगरा, मेरा गांव का नाम हुआ। जी मैं नालंदा जिला से बात कर रही हूँ।
0: क्या बात है, बताइए रंजना जी आप क्या करती हैं?
1: जी मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: जी, ऐसा होता है ना कि सावन भादो का महीना जैसे ही आता है तो हमारे जीवन में उमंग और उत्साह के दिन आने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे त्योहार होते हैं, त्योहारों में बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं। तो आप कौन सी मिठाइयाँ बनाती हैं?
1: जी हम लोग के यहाँ ये घर में ही ठकुरबाड़ी बना हुआ, कृष्ण भगवान का ये मंदिर बना हुआ है घर में,
0: जी।
1: तो उसमें हम लोग का 56 भोग लगता है। उसमें से कुछ बाहर से मिठाइयाँ आती है दुकान से, कुछ घर में भी जैसे हलवा वगैरह होता है, मूंग का हलवा, उड़द का हलवा, वही लगता है भगवान में भोग में जन्माष्टमी के दिन में। तो उस दिन भी हम लोग के यहाँ बहुत उत्साह होगा, पूरे घर सब मिल के जन्माष्टमी मनाते हैं हम लोग।
0: तो आजकल ऐसे हो रहा है कि लोग अपनी स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो रहे हैं, चीनी का कम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ऐसा कुछ करती हैं कि चीनी के बजाय उसमें गुड़ का इस्तेमाल करना है?
1: जी जी हम लोग के हलवा में तो गुड़ ही पड़ता है, चीनी कम गुड़, और ये हम लोग मीठा बोलते हैं, गुड़ से पहले मीठा बनता है
0: जी।
1: जी, जो गन्ने का रस जो निकलता है ना, तो पहले मीठा बनता है,
0: ओहो,
1: उसके बाद गुड़ बनता है, तो वो जो मीठा है वो ज्यादा यूज करते हैं हम लोग मीठा।
0: जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इन्हें अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूक है और पूरे परिवार का ध्यान रख रही है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: ये छोटी बहू फिल्म का गाना है, कन्हैया तू किसको कहेगा मैया।
0: जी, सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, मैं
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: रुचि भट्ट बोल रही हूँ, इंदौर से, मध्य प्रदेश से।
0: जी रुचि जी नमस्ते,
1: नमस्ते।
0: बताइए अपने बारे में बताइए।
1: मैं इंदौर से रहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। और मैं पहले बिजनेस में हुआ करती थी, मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइम बिजनेस में, और अभी कुछ सालों से लाइफ एंजॉय कर रही हूँ।
0: जी, यानी
1: लाइफ
0: जिंदगी का लुत्फ
1: जी
0: उठा
1: मैं
0: रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी देखिए, इंदौर की जब भी बात चलती है तो खान पान आंखों के सामने आ जाता है, तो किस तरह के खाने आप एंजॉय करती हैं या बनाती हैं घर में?
1: इंदौर के पानी में ही स्वाद है ऐसा कहा जाता है, और मुझे भी जैसे मैं रह रही हूँ और यहाँ के खाने का लुत्फ उठा रही हूँ तो वाकई स्वाद है। और चाहे वो आप चाट पकौड़ी ले लें या किसी भी किस्म का स्वाद आप लें, चाहे आप सदर में भुट्टे का किस खाने चले जाएं, या हर तरीके के खान पान में स्वाद है।
0: जी, और अभी यानी हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मना रहे हैं 1 से 7 सितंबर तक, तो पोषण को आप
1: जी,
0: कितना महत्व देती हैं?
1: मेरी समझ से पोषण, मेरे जैसे शरीर के लिए पोषण का काम जो खान पान से मिलता है, उसको मैं चाहूंगी कि मैं इंदौर के खान पान से जोड़ूं। यहाँ पे जैसा कि आपने पूछा कि चलन क्या है खाने का, तो अभी चलन भी बदल रहा है, मिलेट्स को ज्यादा शामिल किया जा रहा है, चाहे वो चाट पकौड़ी हो या किसी भी टाइप की रेसिपीज हो उसमें, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस हैं यहाँ के लोग, इसलिए उस चीज के ऊपर भी फोकस बढ़ रहा है और लोगों का खानपान भी बदल रहा है उसी के हिसाब से।
0: जी, मिलेट्स को बहुत महत्व देना चाहिए, कि जैसे ज्वार का आटा है, फिर बाजरा है, फिर यानी मैदे को हमें अवॉइड करना है और मिलेट्स को महत्व देना है। साथ ही इंदौर की एक और खासियत है स्वच्छता, साफ सफाई, तो ये क्या संदेश आप लोगों को देना चाहेंगी साफ सफाई को लेकर?
1: मेरी तरफ से एक ही, अगर घर से शुरुआत करेंगे, गीला कचरा सूखा कचरा और की शुरुआत से आदत डालेंगे, तो हर घर और हर शहर इंदौर जैसा ही स्वच्छ बन सकता है, और हम कर सकते हैं। शुरुआत हमें घर से ही करनी है।
0: ये बात आपने बहुत सही कही, और घर से तो हम लोग शुरुआत करते हैं, पर सार्वजनिक स्थल पर जाकर हम थोड़े से ना लापरवाह हो जाते हैं, इधर उधर चीजें फेंकने लगते हैं।
1: जब हम सार्वजनिक स्तर पर बात करते हैं तो वहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन होना ज्यादा जरूरी लगता है मुझे, और सेल्फ डिसिप्लिन एक माँ, एक लेडी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो खुद सेल्फ डिसिप्लिन रहेगी तो उसकी फैमिली भी सेल्फ डिसिप्लिन रहेगी, और एक एक अच्छा सोसाइटी और एक अच्छा साफ सुथरा शहर हम हर जगह, हर पूरे देश में बना सकते हैं।
0: जी, यानी कि बच्चों के संग जब हम बाहर जाते हैं तो बच्चों को इस तरह की आदत लगाएं कि बस चॉकलेट खाया के रैपर नहीं फेंकना है, उसे हमें डस्टबिन में ही डालना है। तो बच्चे अगर बचपन से इन आदतों को अपनाते हैं तो बड़े होके एक बहुत अच्छे नागरिक बन सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने।
0: जी बताइए रुचि जी, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं कारवां फिल्म का पिया तू अब तो आ जा,
0: तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते।
0: नमस्ते, बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सुचित्रा पंडित हूँ, उज्जैन से बात कर रही हूँ, उज्जैन मध्य प्रदेश।
0: जी सुचित्रा जी, बताइए क्या करती हैं आप?
1: मैं संगीत की कक्षाएं भी लेती हूँ, जॉब भी किया हुआ है। अभी मेरी उम्र 69 है और बचपन से ही विविध भारती सुन रहे हैं।
0: क्या बात है,
1: मेरे यहाँ रोज दिन भर रेडियो चलता रहता है।
0: क्या बात है। और आपने जैसे बताया कि आपकी
1: जी
0: उम्र 69 साल की है, पर आपकी आवाज से ऐसा लगता है कि कोई 20-25 साल की युवती हमसे बात कर रही है।
1: बहुत अच्छा लग रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए मैडम।
0: नहीं, और आपने कहा है कि आप संगीत की शिक्षा देती हैं, तो कुछ
1: जी
0: सुनाइए
1: मैम।
0: आप।

0: बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत
1: सडनली तो याद आ गया वो गा दिया मैडम कोई पहले से तैयारी नहीं थी
0: नहीं नहीं बहुत सुंदर आपकी
1: जी
0: आवाज भी है और बहुत सुर में गाती हैं आप। और जैसे आपने कहा कि आप संगीत की शिक्षा देती हैं, तो किस उम्र के बच्चे आपसे शिक्षा लेते हैं, इन्हें कुछ ग्रहण?
1: मैं प्रायः जो दूसरी पास हो ऐसे बच्चों से शुरू करती हूँ, ताकि वो थोड़ा कम, जिनको अक्षर ज्ञान हो तब से शुरू करती हूँ। अक्सर बचपन से ऐसा लगता है लोगों को कि छोटेपन से एकदम से बहुत बड़े कुछ गायक बन जाए, वो संभव नहीं है। धीरे धीरे ये सारी चीजें बच्चों में आती हैं, पहले उनका अपने को रुचि किस चीज में है ये देखना बहुत जरूरी रहता है। आजकल क्या हो गया, ये रियलिटी शोज के कारण ना हर पेरेंट को लगता है कि हमारा बच्चा एकदम स्टेज पे जाके और गाने लगे। कुछ चीजें तो जैसे बोलते हैं ना, इनहेरेंट होती हैं, आपके अंदर वो ताल और सुर होना चाहिए, तभी वो उभर के बाहर आ सकता है।
0: और आप रियाज के माध्यम से, अपनी शिक्षा के माध्यम से बच्चों को तराशते हैं।
1: जी जी जी,
0: ये आपने बहुत सही बात कही है, ये एक संदेश है। और संगीत को लेकर आप छोटे बच्चों को या पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: हाँ, यही देना चाहूंगी मैं कि पहले ना उनकी रुचि किस चीज में है वो देखिए पहले आप। जबरदस्ती अगर किसी को ड्राइंग में रुचि है तो उसे ड्राइंग करवाइए, उसे अगर किसी संगीत में रुचि है तो कराइए, या उसे स्पोर्ट्स में कोई रुचि है तो वो स्पोर्ट्स उसे करवाना चाहिए। मतलब आपकी इच्छा है कि वो अच्छा गायक बन जाए तो वो संभव नहीं है, उसमें वो चीज अंदर होनी भी चाहिए ना, ईश्वर प्रदत्त भी कुछ चीजें होती है।
0: पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इच्छाएं बच्चों पर लादना नहीं चाहिए।
1: हाँ, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, उसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है, तभी बच्चा आगे जाकर के कुछ कर सकता है। तो दौड़ में हम ना दौड़े, वास्तव में अगर कलाकार बनाना है तो उसके साथ धैर्य, साधना, ईश्वर कृपा, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है, ऐसा मुझे लगता है।
0: जी, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया। और बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: बंदिनी का, अब के बरस भेजो भैया को बाबुल, अभी सावन भी है
0: जी,
1: और बहुत ही प्यारा, आशा जी ने बहुत अच्छा गाया है वो गीत, तो बहुत मेरे दिल के करीब है वो गाना
0: जी। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: आलिया भानु बात कर रही हूँ, वडोदरा गुजरात से।
0: जी आलिया जी, बताइए क्या करती हैं आप?
1: मैडम मैं ब्लाइंड हूँ, घर पे ही रहती हूँ। आप सोनाली पाठक बोल रही है ना?
0: जी हाँ, मैं सोनाली बात कर रही हूँ।
1: मुझे आपसे बात करने का बहुत अच्छा लगा।
0: जी हाँ,
1: खुशी हो रही है।
0: जी हमें भी बहुत खुशी हो रही है, आपका फोन लग गया है। और चलिए बताइए, अपनी रुचियाँ क्या हैं आपकी, कौन से शौक हैं आपके?
1: मुझे रेडियो सुनने का बहुत अच्छा लगता है,
0: रेडियो
1: गाने सुनने का।
0: जी,
1: और मुझे ना चटरवट के सितारे, आज के मेहमान, ये सब इंटरव्यू वाला प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: एक रिश्ता फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: साइबर रानी ने फोन लगाया मैम।
0: जी साइबर रानी, कहाँ से फोन लगाया है आपने?
1: सहारनपुर से फोन लगाया।
0: जी साइबर रानी जी, अपने बारे में बताइए।
1: जी मैम, मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ।
0: क्या पढ़ रही हैं आप?
1: बीए कर रही हूँ।
0: तो आपके कुछ भविष्य के कुछ प्लान्स हैं कि बीए के बाद में क्या करना चाहती हैं?
1: अपने खुद के लिए टीचर बनना सोचती हूँ।
0: टीचर बनना चाहती हैं?
1: जी मैम।
0: जी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए हर किसी का सपना होता है और आपका सपना है टीचर बनना। तो आप यानी टीचर क्यों बनना चाहते हैं, इसके पीछे भी कोई कारण होगा?
1: जी मैम, मेरे को अच्छा लगता है।
0: जी हाँ, देखिए आप टीचर बनना चाहती हैं, तो बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी आप इस कॉल के माध्यम से?
1: बच्चों का मैं कहना चाहूंगी, जिसके भी बच्चे हैं अपने बच्चे को अच्छी तरह पढ़ाइए, आगे आने वाले भविष्य में उनकी जिंदगी अच्छी बने।
0: जी, तो चलिए बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: कृष्ण फिल्म मूवी का पहली पहली बार मोहब्बत की है।
0: जी सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: उज्जैन से अनिता जोशी ने।
0: अनिता जी, क्या हालचाल है?
1: बढ़िया, महाकाल का बाबा कृपा है
0: जी। बताइए क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ
0: जी। और आज जन्माष्टमी का त्योहार है, तो आप जन्माष्टमी का त्योहार कैसे मनाती हैं?
1: हम कान्हा जी का अभिषेक करते हैं, उनको श्रृंगार करते हैं, झूला झुलाते हैं, उनको माखन मिश्रे का भोग लगाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं
0: जी। अच्छा, अपने शहर के बारे में बताइए
1: जी। हमारे शहर में कृष्ण भगवान, उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी यहाँ पे, सांदीपनी आश्रम है उनका
0: जी।
1: महाकाल का मंदिर भी है, 12 ज्योतिर्लिंग माता है वो।
0: बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: संजोग फिल्म का, यशोदा का नंदलाला
0: जी। संजोग फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सुवाना बानो बात कर रही हूँ, गुजरात अहमदाबाद से।
0: जी बताइए, आप क्या करती हैं?
1: बेटा मैं घर भी देना पसंद करती हूँ, थोड़ा बहुत कभी टाइम मिला है तो सिलाई विलाई कर लेती हूँ कपड़ों में, कपड़े में सिलती हूँ मैडम।
0: जी, यानी सिलाई करने का आपको शौक है।
1: मुझे आपके कार्यक्रम भी सुनना बहुत पसंद है
0: कौन से कार्यक्रम पसंद है आपको?
1: मैडम। मुझे हिलो फरमाइश आता है, वो भी बहुत पसंद है, और आज के फनकार और बम्बे टोसी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: चलिए, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैडम हमको दीवाना कर गए का डायडसम
0: जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: सखियों, आपसे की गई बातें, आपके अनुभव दिल को छू गए। आज हमसे जुड़ने वाली सभी सखियों को धन्यवाद। और वे सखियां जिनकी कॉल नहीं लग पाई, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, अगली बार जरूर कोशिश कीजिएगा, क्या पता पहली बार में ही आपकी कॉल कनेक्ट हो जाए। साथ ही जिन सखियों ने आज हमसे बात की, उनसे ये करबद्ध अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिल सके। और हमारे पुरुष श्रोताओं से अनुरोध है कि मंगलवार को हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वे कॉल न करें, क्योंकि इससे लाइन व्यस्त हो जाती है और हमारी सखियों को कॉल कनेक्ट करने में परेशानी हो सकती है। सखियों, आपसे अब मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले प्रोग्राम में। हमारी सखियों को बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर इस तरह से हैं, 400-24662 यानी 400-24662। दूसरा नंबर है 28670288 यानी 28670288। और मुंबई का STD कोड है 022 यानी 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है किरण बंग, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं। दीजिए आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की जुबा हेलो सहेली।

0: सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी।
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलेवन इलवालर इवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंडाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।